रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अन पौ प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंद्र इंद्रान शाहो सहान गण जाय त्रिभुवन महीप सुर

आए प्रभु शरणागति। कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचार कोई। माटी का क्या तुपै स्वामी मानस की गत एही। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसेय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों झटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो

नावेपत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण भी खोट गवावे एक पीना दी दस भी हिरली ता मूड़ा खौका करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सत नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मिटा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शाह अपनी दे रास खात पीत वरते अंत उल्लास अपने मान खश बहुरशाली अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस दिशा गे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिनसै ओ मन पछतावे जो दिसै सो चलन हार लपट रो तय अंध अंधार बटाओ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे की मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई तत्कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम समाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जो बन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कृत कुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सरवन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पिखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार खोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझी मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम ले मृति साकत की यार जा साच बिना कह होवत सोचा मिर्था नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन मृथि सब काम जो कृपन के निरार्थ नाम धन तन ती जन जी घट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कुमावत मन ही प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू भीन अवर उपदेश अपना करे आपत जावत जन मै मरे जिसके अंतर वसै निरंकार जिसकी सिख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत आपे आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव स्यानप सकल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावे तिसलय लड़लाए थान थरंत रह समाए

कभू सर्प की होत्रवाल, कभू है भय बड़ राजा, कभू भिखारी नीच का साजा, कभू अब कीर्त में आवे, कभू भला भला कहावे, जो प्रभरा कहते भी रह, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कभू हो पंडित करे बख्यान, कभू मोन तारी लावे त्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग हो जिया, अनुक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वा की दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे अनुछावे, ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कभू साध संगत हे पावे, उस स्थान ते बाहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मैं चलया एक ठाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सत कुरबान। श्लोक सुखी बसै मसकीनी आ आपने वार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले अष्टपदे, जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो मन मंत, सो होवत पिष्टा का जंत, आपस को कर्मंत खावे, जन्म मरे बहुजोन प्रभावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंता होए कर कर पावे, तृण समान कर संग ना जावे, बहु लश्कर मास मान को पर करे आस, पाल भीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, घिनमा होए जाए बसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तस्करी खुवारे, गुर प्रसाद जा कमिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह प्रमान, कोट कर्म करे हाँ उतारे, श्रम पावे सकले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरख फिर फिर अवतार, अनुक जतन कर आत्म निंद रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व किरी जा कामन होए, कहो नानक ता के निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कच हुए, तब इस कहो सुख नाही कोए, जब ही जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी में, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा दे बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक खाओ छुटे, सहस खटे लख कौ उठतावे, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे, अनक भोग भिख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप मरे, बिना संदोख नहीं कौ राजे, स्वप्न मनोरथ बिरथे सबका जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किश की नो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, भू जय देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न मिन से आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचे सबके साथ, आप की नो आपन विस्तार, सब कच उसका हो करने हार, उसते पिरन कहो कुछ होए, थांतनंतर एक कैस होए, अपने चलत आप करने हार, कौत करे रंग पार, मन में आप मन अपने माहे, नान कीमत कहना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने अभिख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले जीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत।

तरु श्यार्प सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पा जाय अष्टपदी मानु की टेक प्रति सब जान देव।

ससरा बिना नरगुन आप सरगुन पियो हे कला तार जिन सगली मोही अपने चढ़त प्रभे आप बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाही कोय सर्वंदर अंतर को।

ताती ठांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पावन सह पूर्ण यास भगत पाया तम प्रगास तेत कर जाय बसै अविनाशी गौ नानक कर टीजम फासे तत विचार गह जन साचा जनम रह सुगा चुगाचा आवा गबन मिटै प्रभ सेव आव जाग सरन गुरुदेव इत जन काहे उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक भावना छुट नहार सिमरत शास्त्र वेद विचार हर की पद करो मन लाए मन मित नानक फल पाए संग न चाल सुति रह तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सत मीत कुटंब अर बनता इंते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माए वे सार इंते कहो कवन छुटकार असहतिरत असवादी झूठ डम झूठ फासारी जिन दिए तिस भुजना बेगाना ना बेसार नानक बठिताना गुर की मातुले आने भगत बिना डूबे सियाने हर की पद गुरु मन मीत निर्मल होय तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन जन के किल बिक जाहे आप जप अपरा नाम जपाव संत कैद रहत कत पाव सार भूत सत हर को नाव सह सुपै नान गुन गावत तेरी उतर समैल बिन सजाय हम बिक पैल होय जंत बसै सुख नाल सास करा सर नाम संभाल छाड़ श्यान सगली मना सा संपावे सर धाना हर पूंजी सच करोवे हारिया सुख दर कै जयकार सर्व ग्रंथ रे को देखो नान जाके मस्तक देख एक को जापे को साला एक समरे को मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंत जापे के भगवंत एक को एक कर पूर्ण पूर्व है प्रभ्याप अनक विस्तार एक ते भय एक रात प्रक्षित कहे मन तनंतर एक ब्रह्म राता गुर प्रसाद नानक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर आता शरण आए नानक की प्रभे थे अपनी भक्ति लाए अष्टपदे जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगा दूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल सिंह लागे।

प्रभु सरस पाए तब शिव शक्त का गुदाए। जब आपे आप अपने जोत धरे तब कवन न डर कवन कत डरे। आपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुख आपन आसन ते जन्म मरण का विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास का किस होए।

जब जह आपन पूजा आपन आपने रात है, कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा। बिस्मर बिस्मर रहे बिस्माद, नानक अपनी गात जानो आप। जय अचल अछेद पेद समाया, उहां किसे व्याप्त माया। आप सुख आपे आदेश, ते गुण का नाही परवेश। जय एक एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लाग चिंता। जय आपन आप तियारा, तै कौन कथै कान सुन न हारा। बाब्यंत उड़ते ऊंचा, नानक आप सुख आपे पहुँचा। जय आप रच प्रपंच कार, ते गुण में कीनो विस्थार। पापुन तै पई कहावत, कऊ नर्क को स्वर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल, हम मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान।

निर्भय जपै सगल पाप मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छोटै जिस प्रभु रागत सनाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर पर ठाठा गुर सूरा नानक ताके काज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्टा दर्शन पेगत उतरत श्रेष्ठ चरण कमल जाकी अनूप सफल दर्शन सुंदर स्वरूप तन सेवा सेवक परवान अंदर जमे पुरख प्रदान जिस मन वसै सुहोत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान जन गुरु दिया ज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन बरगास यश पदे संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री किस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नानद अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाद कहर ना जय अचर विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत।

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै।

गुर वाह गुर वाह गुर वाह गुर गुरु जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आओ सारे रसना नू करिए जी पवित्र गज के बुला दियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो सतगुरां ने साडे ते अपार किरपा कीती जो सानू सत संगत दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां। सतगुरां ने साडे ते अपार किरपा करके सानू आप संगत दे विच लै के आए ने। महाराज कहिंदे आपे संगत सद बहाले आपे विदा कराए। ते साडे ते अपार किरपा करके सानू सुखमणी साहब जी दी बाणी राही जो ज्ञान दे रहे सी। महाराज कहिंदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावा। जो सानू सतगुरां ने उपदेश दिता उस अकाल पुरख दे नाम जपण दा, महाराज कहिंदे साजन संत करो इह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपै अवरै नाम जपावो। सो यही उपदेश नू कमाउण वास्ते सतगुरां ने साडे ते अपार किरपा कीती जो सानू समय बख्शिश कीते ते जिस विच बैठ के आपां उस अकाल पुरख दी उस्तत वडियाई राही आपां सतगुरां दा नाम जप सकीए। महाराज कहिंदे जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावै। हुण जदों सवास अंदर नूं जांदा उहनूं सास कहिंदे ते जदों सवास गगन नूं आउंदा उहनूं गिरास कहिंदे ने। सो आपां इसे तरीके नाल जदों गुरमंत्र दी कमाई करांगे तां हौली हौली साडा मन इन्हां विचारां तों मुक्त होणा शुरू हो जाएगा। सो जिहड़े गुरमुख नवें ने आपां इक वार विधी नूं समझ लईए। जदों सवास अंदर नूं जावे तां वाहे दी आवाज़ ते जदों सवास गगन नूं आवे उदों गुरू दी आवाज़ नूं बोलणा है ते निकली हुई जिहड़ी आवाज़ उहनूं सरवणा दे नाल जिहनूं कन्न वी कहिंदे आपां सुणना है। आपां इक वार वेख लईए ते फिर आपां सारे गुरमुख प्यारे रल के सिमरन अभ्यास करांगे। सारे गुरमुखां दे चरणां दे विच बेनती है कि नेत्र आपां बंद रखणे ने, रसना नूं बोलण ते ला देना ते आपां सरवणा नूं सुणन ते ला देना। आओ गुरमुख प्यारिओ करो जी कृपा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह।

परे तिनके दुष्ट दुखित हुवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वस कैन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो काहा दारिद दुष्ट दोख तेरा हा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई, संबत सत्रह है सहस पणिजय अर्ध सहस।

अहृणमत वेद हथियान पौखला अग्नतप्ता पांडा पाओ अमृत तितटाल कड़िया शब्द सच्ची टकसाल।

सोहेला राग गौड़ी दीप की महा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्तन।

पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोते तोप मल आण लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूला तो ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आते अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाव सहस तब नैन नन नैन है तोहे का सहस मूर्त नना एक तोही सहज पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहज सब गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में जानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत स्वभाव सुअरती होए।

क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरव लिखत लिखे गर पाया मन हार ले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हार रस साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चवै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समान दुख जन मरण मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया पर

चले सबडारी। ब्रह्मादिक शिव चंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तारण गगन आव

क्रोध मद मत सतृष्णा बिनस जाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन।

0: समस्ती स्वरूप
1: रंगी परमाते समस्ति प्रभुते
0: लगंग बनाने कलंकी स्वरूप
1: नमो राजेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राजेश्वरं परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र

0: नमो चाचा नमो पुपु पे
1: दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमो सत्सनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत जंत्र
0: नमो ईष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं परां
0: अनुपे अनुपे समस्त कुलवासी
1: सदा सदा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदा
0: उर्ध अर्धं अंग हर्ता
1: परं पर परमेश्वरं प्रोच पाल
0: सदा सदा से दाता दयालं
1: अशेदी अपेदी अनामंग काम
0: समस्त अपराधी

नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे।

0: के जेब
1: दाद मादना जात जाकर जन बरन बहीन
0: चक्कर बक्कर फिरे चत्र चक मानिए पुतीन
1: लोग चौदे के दिखे जग जाप ही जे जाप
0: आगे वनाद मोरो था प्यो सबे जे था।

0: सरपन पर है सरबन कर करुणा कर है बिसंबर
1: है
0: ब्रह्मंडस है खलखंड अजप्पा जप है थप्पा थप
1: है
0: अमृता अमृत है करुणा
1: कृत है
0: अमितेश्वर है परमेश्वर है
1: अमृता अमृत है
0: अजबा कृत है अमृता अमृत
1: है खलकायक है
0: दिसंबर है करुणा
1: निर्णायक है सर्पायक है
0: पंजन है अर्गंज
1: तापन है जब जापन है
0: अकलन कृत है सर्वाकृत
1: कर्ता कर है हरता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म।

0: नमो तेज तेज
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
0: नमो राज संताम संसात रूपे
1: नमो परम तन तन गन तन स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान
1: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान
1: नमो भोज भोज नमो पान पान
0: नमो कल कर्ता नमो शांत रूप
1: नमो इंद्र इंद्र अनादं प्रभुते
0: अलंकार रूपे अलंकार
1: नमो आसी आसी नमो बांक बंके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अभु अजू अनास अकास
0: अगंज अपंज अलख अपाख
1: अकाल दयाल रेख
0: अनाम अकाम अगा अडा।

0: समस्तुल प्रणाम
1: अतंजुलादा में समस्तुल निवासे
0: कामन बेपुते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्मम प्रणासी सुधर्मम प्रभुते
0: सदा सचदानंद सत्रन प्रणासी
1: करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय बेपुते गजाय गनी
1: हरियम करियम करिमुल रहिमे
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते
1: शंभम शुभम सर्वदा सर्वयुगते।

0: नाथ बिचारे
1: श्री भगवान के बिन अजबो अंत के ताम सिदारे
0: तीरथ नान दया दम दाम सो संजम नेम अनेक बिसेखे
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के बेखे
0: कौन आहार जति जतार सब सो विचार हजार देखे
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखे
0: सुन से पा दुरन दुबा सु सास ना दुर जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंकज न हलेंगे।

0: एक भगवान जपेंगे,
1: जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे,
0: उन पर तापन बाट जैतन पापन के वह पुंज खपेंगे,
1: सास ऊपर सन फ्रे जल सतर सबे लोक चपेंगे,
0: मानव इंद के चिन्ह रातब जोन तिर लोक को राज करेंगे,
1: कोश नाग जात दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे,
0: ब्रह्म महेश्वर भी संसची पद अंत फसे जम फास परेंगे,
1: ये नर श्री पद के प्रसाद मगत ये नर फे रदे करेंगे,
0: जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो,
1: नाथरी हो रही है सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो,
0: बास की बखियान से बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबहस बितायो,
1: सात को सुन लियो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो,
0: काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो,
1: काहू लिखियो राशि दिशा में काहू पिछा को सिर।

0: सेवक से हमारे तारी है चुंचु सतर हमारे मारी है पूजो सदा हमारे पचासरी अजु जो करियो रचा हंता तुमो पुरी चतर दस कंता
1: काल पाए ब्रह्म भक्तरा काल पाए शिव जुगुप्सरा
0: काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल

सदृशी दिखाय चंपव आजुगा स्वरूप चंपव दुष्टे उद्भुत पाता सकल मलेश करो रण काता पूर्व जीवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे रचा हुए था ये सब काला दुष्ट अर्जित रे तत्काला रेत सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्टा कोई जिन नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दो तेरा आप दे दो के लिए बचाई सकल देखो हरता दूषण दो को क्षय करता मन बाषित फल पावे सोई दूर न से व्यापक कोई अरिल राम रही पुराण कुरान अनेक मत एक न मानियो श्री स्पान कृपा तुम्हारी कर में न

0: और क्या करे बेचारिया,
1: भूले फिरे दर्द सिख नाम लाल सवारिया।
0: गुरु प्रसादी मन पया जित गुण गुरु प्रसादी मन पया, निर्मल जी ना पाना पावे।
1: कहे नानक जिसने प्यारे सोई जन पावे।
0: आओ संत प्यारियो अकत की करे कहानी,
1: करे कहानी अकत तेरी केत द्वारे पाईए।
0: तन मन तन सब सो गुरु को हुक्म निये पाईए। कहे नानक सुनो संतो कतियो अकत कहानी।
1: ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया,
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया।
1: ए माया मोनी जिने परम बुलाया,
0: माया ता मोनी तिने कीती जिंट गोली पाईया।
1: कुर्बान कीता तिसे मिठो जिनो मीठा लाया।
0: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया।
1: ए मन प्यारे तू सदा सच सुमाले, एक टम तुझे देखदा चले नाही तेरे नाले।
2: साथ तेरा चले नाही तस नाल क्यों जित लाइए।
1: ऐसा कम मुले ना कीचे जित अंत पछताइए।
0: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
1: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच सुमाले,
0: अगम गोचरा।

0: अंत ना पाया।
1: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
1: जी जान सब तू दो पाए एक वेक परसन आया।
0: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु।

0: अपनों कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे
1: और की बात कहा के तो सो बेटी के पट बीच बचावे
0: जाच पुजंग सो दानव देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे पाए सके नी पार प्रभाहु को नेति नेते वेद बतावे
1: सके सभी गुजिया सुहार परे हरात ने
0: नारद से चुतरारन से रुमनारक से सब हूँ मिल गायो
1: वेद देव ना पेट लगे सब हार परे हरात ने
0: पाए सके नी पार उमापत से दसनाथ सनातन त्यायो
1: ध्यान करो ते को मन में जे को तो सबे जशायो
0: वेद पुराणक देव कुरान पेद निर्पाण सबे पचहारे
1: वेद ना पाए सके वन पेद को खेद ते अनुच्छेद पुकारे
0: राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साक ना सोग ना सांग त्यारे
1: आद नाद गाद पेगत वैग

0: सबुते न्याराद परगत वै विकारा
1: बचन जात न पाता सतर मित्र जे तात न माता
0: साते गुण सवंदे ने राजा धर्मयर गाय बसेरा
1: अनद रूप नाद बानी चरण संजे बस भवानी।

जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहागना होई राम। नेह चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहागना होई राम। नेह चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई सदा।

अंदर सच्चा नेहो लाए प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेवी है सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है,